दुपट्टे हजारों तो देखे हैं मैंने, मगर कोई ऐसा दुपट्टा नहीं है। नीले दुपट्टे, ये पीले दुपट्टे।

0: जी मैं एक सिटी विशेषज्ञ हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि इंसान के पास हर मौके के लिए सिटी है, जैसे पिक्चर हॉल में सिटी, बिना चटकनी के बाथरूम में नहाते हुए सिटी, ओ जी खूबसूरत चेहरा सामने हो तो बजी सिटी होए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर खुला हो तो कैसे बजेगी सिटी? ओ जी इतनी ठंड में आपकी सिटी नहीं बैंड बज जाएगी। हाँ
1: कैल्विनेटर, the coolest one.